के ऊपर बहुत सारे एपिसोड बनाए हैं जिसके अंदर मैंने दिल के फीलिंग्स के बारे में, दिल के अंदर जो प्यार है, दिल के अंदर जो नफरत होती है और ऐसी ही बहुत सारी चीजें जो हम बोलते हैं कि हम दिल से सोचते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे एपिसोड मैं ऑलरेडी बना चुका हूं जिसमें मैंने दिल से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें की। लेकिन आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट बॉडी पार्ट के बारे में बात करने वाला हूं जो आपको एक्चुअली में वो काबिलियत देता है कि आप हर दिन उठ पाए, समझ पाए दुनिया में क्या चल रहा है और कुछ ऐसे डिसीजंस या ऐसे स्टेप्स ले पाएं जिससे आपकी लाइफ अच्छी बने। और हाल फिलहाल में ही इस वर्ड के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है जिसको हम कहते हैं मेंटल हेल्थ। और मेंटल हेल्थ पे भी मैंने बहुत सारे एक ऐसे एपिसोड्स किए हैं जिसके बारे में हमने बात किया था कि कैसे हम अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। बहरहाल इस बार का जो एपिसोड मैं आपके लिए लेके आया हूं उसके अंदर मैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई बात नहीं करने वाला। इनफैक्ट मैं इस मेंटल यानी कि जो आपका ब्रेन है उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फनी फैक्ट्स लेके आया हूं आपके लिए जो आपको हैरान भी कर सकते हैं। तो आप तैयार हो जाइए सर्दी में फिर से थोड़ी सी गर्मी का एहसास लेने के लिए, क्योंकि मैं आपके ब्रेन के सेल्स को चार्ज करने वाला हूं जो आपकी बॉडी को थोड़ा सा चार्ज करेंगे और शायद आप थोड़ा सा एनर्जी महसूस करें अपनी बॉडी में और गर्मी लेके आए अपने खून में। आप हैं मेरे यानी आपके अपने देसी आजय विकास के साथ और ये है एसीटी देसी जो आता है हर शुक्रवार रात 8:30 इन कैनबरा और 4 इन इंडिया ओनली ऑन 2XXFM 98.3 पीपल पावर्ड रेडियो। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वणक्कम।

यूनिवर्स की ही तरह ह्यूमन ब्रेन भी एक ऐसी चीज है जिसके अंदर बहुत सारी मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं और इसकी जो लिमिट है वो अभी तक कोई ढूंढ नहीं पाया है। कहते तो है कि बहुत कम परसेंटेज ऑफ ह्यूमन ब्रेन ही यूटिलाइजेशन होता है, बट कोई भी सब्सटेंशिएट नहीं कर पाया कि कितना परसेंट ब्रेन यूज होता है एक्चुअल में ऑन अ डे टू डे बेसिस। बहरहाल मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, फन फैक्ट्स लेके आया हूं ब्रेन के बारे में ही आपके साथ शेयर करने के लिए आज के एपिसोड में। तो जो पहला फन फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि एन अडल्ट ब्रेन वेज अप्रोक्सीमेटली 3 pounds, यानी कि लेस देन 1.5 kilo ऑफ द एंटायर बॉडी वेट। द ह्यूमन ब्रेन ग्रोज 3 times इट्स साइज इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। जैसे कि बच्चा जब पैदा होता है तो 3 times साइज ग्रो करता है जस्ट इन 1 year, एंड देन इट ग्रोज अंटिल यूर अबाउट 18 years ऑफ एज, एंड देन इट गोज द अदर वे। इसके बारे में हम और जानेंगे लेकिन इस सॉन्ग के बाद। आप हैं मेरे यानी आपके अपने देसी आरजे विकास के साथ, तो इंजॉय कीजिए और सोचिए कि मैं नेक्स्ट फन फैक्ट क्या लेके आने वाला हूं, और मैं आपके पास वापस आता हूं इस

से बड़ा ब्रेन किसके पास है? वर्ल्ड में द लार्जेस्ट ब्रेन ऑफ एनी एनिमल प्रेजेंट ऑन दिस प्लेनेट इज ऑफ स्पर्म व्हेल दैट वेज अराउंड 20 pounds. एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो ब्रेन के बारे में है वो ये है कि लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी द ब्रेन कांट फील पेन एंड इट ओनली इंटरप्रेट्स पेन सिग्नल सेंट टू इट बट इट डज नॉट फील एनी पेन. तो कहते हैं ना कि दिल में दर्द हो रहा है, बॉडी में दर्द हो रहा है, सब जगह दर्द हो रहा है, लेकिन सर में जो दर्द होता है वो एक्चुअली में सर में दर्द नहीं है, वो एक्चुअली में सिग्नल्स हैं जो ब्रेन इंटरप्रेट कर रहा है कि देयर इज सम काइंड ऑफ पेन, बट ब्रेन एज अ बॉडी पार्ट डज नॉट फील एनी पेन. इंटरेस्टिंग है, मुझे भी समझ नहीं आया कि ये लॉजिक क्या है, बट ये जो लॉजिक है वो ब्रेन ही समझ सकता है. मेरे पास शायद इतना ज्यादा ब्रेन नहीं है, शायद आपको समझ में आए. तो चलिए आइए सुनते हैं एक और गाना. फ्राइडे नाइट है और वीकेंड की शुरुआत हो चुकी है, तो आपके लिए ये एक और गाना जून में जिनका बर्थडे आता है, वन ऑफ द आर्टिस्ट. आई एम श्योर जब आप ये गाना सुनेंगे तो आपको वो आर्टिस्ट समझ में आ जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ. तो आप ये गाना सुनिए और मैं आपके पास वापिस आता हूँ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट ब्रेन को लेके इस गाने के बाद.

ऐसा आपके साथ हुआ है कि आप आइसक्रीम खा रहे हो और सडनली आपको शूटिंग पेन हो एकदम ब्रेन के अंदर और एक ऐसा लगे कि ब्रेन एकदम ठंडा हो गया? हुआ है कभी आपके साथ? मेरे साथ एक बार हुआ था और वो जो फीलिंग होती है वो एक्चुअली मैं बयान नहीं की जा सकती, बहुत ही पेनफुल फीलिंग होती है और उस फीलिंग का एक नाम है, उसको कहते हैं ब्रेन फ्रीज। और इट हैपेंस व्हेन यू ईट और ड्रिंक समथिंग दैट इज कोल्ड। तो होता क्या है कि जब आप कुछ सडनली कुछ कोल्ड खाते हैं तो जो आपकी जो ब्लड वेसल्स और आर्टरीज होती हैं जो ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं, ब्लड सप्लाई कर रही हैं, वो ठंडी होने की वजह से पहुंच नहीं पाती हैं और वहां पे एक सिग्नल पहुंचता है ब्रेन के पास और ऐसा लगता है कि ब्रेन में एक सडनली एक शूटिंग पेन हुआ है और फोरहेड में आपको पेन महसूस होती है, उसको कहते हैं ब्रेन फ्रीज। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कोलेस्ट्रॉल, जिसको बॉडी के लिए तो हार्मफुल माना जाता है, लेकिन इट इज एक्चुअली की टू लर्निंग एंड मेमोरी। हाउएवर हाई कोलेस्ट्रॉल हैज डिफरेंट इफेक्ट्स डिपेंडिंग ऑन द एज एंड अदर फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट्स टू योर हेल्थ। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि लाइक आर बॉडी 75% ऑफ द ब्रेन इज मेड अप ऑफ वाटर। दिस मीन्स दैट डिहाइड्रेशन इवन इन स्मॉल अमाउंट्स कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द ब्रेन फंक्शंस। तो बी केयरफुल कि आप बॉडी में हाइड्रेशन मेंटेन रखें क्योंकि ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर बॉडी एंड इट नीड्स वाटर टू कीप इट गोइंग एट अ स्मूथ रेट। तो आपके दिमाग को और दिल को स्मूथ रेट पे रखने के लिए और शायद थोड़ा सा एलिवेट करने के लिए अगला गाना मैं लेके आया हूं आपके लिए ऑन एसीटी देसी, जो आता है हर शुक्रवार रात 8:30 इन कैनबरा और 4 बजे इन इंडिया ओनली ऑन 2XXFM 98.3 पीपल।

तो हमने ये तो जान लिया कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो जो फर्स्ट ईयर में 3 times इट्स साइज ग्रो करता है और वो ग्रो करता रहता है बाय द टाइम वी आर अराउंड 18 years ऑफ एज. लेकिन उसके बाद क्या? स्टडीज ये बताती हैं कि ह्यूमन ब्रेन बिगिंस टू लूज सम मेमोरी एबिलिटीज एज वेल एज कॉग्निटिव स्किल्स बाय आवर लेट 20s, दैट इज 20s के बाद आपकी जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं और जो एबिलिटीज हैं वो एक्चुअली में रिवर्स की तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं. तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ब्रेन को फंक्शनल रखने के लिए हम ये ना करें कि हमने अपनी एक जो बेसिक पढ़ाई खत्म कर ली है और हमने कुछ कॉलेज डिग्री कर लिया तो बस हो गया, अब वही करते रहे और कुछ ब्रेन का यूटिलाइजेशन ना करें. ब्रेन इज लाइक अ मसल एंड देन यू हैव टू कीप इट इन एक्सरसाइज मोड सो दैट इट keeps working, and then if you don't work on your muscles you feel soreness, you feel loss of strength and all the other side effects that comes along with it. Or human brains get smaller as we get older. Basically ye grow karta hai till the time we are 20 and then it goes back, and then usually after somewhere in middle age kehte na ki we start to lose memories and we start to lose our brain, and then you know slowly and steadily the decline comes in. So it's very important for us to keep the brain working and to keep it fit and keep it working so that our body keeps working as well.

लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात जो मुझे पता चली है वो ये है कि कंप्यूटर और वीडियो गेम्स मे हेल्प इम्प्रूव कॉग्निटिव एबिलिटीज, यानी कि कुछ ऐसी गेम्स हैं जो स्टडीज के दौरान पता चली हैं कि अगर हम वो खेलें और अपने दिमाग का यूज करें स्ट्रेटेजिकली और यू नो इट पुशेस यू टू थिंक, इट पुशेस यू टू यू नो कंसीव न्यू आइडियाज, इट पुशेस यू टू स्ट्रेच योर इमेजिनेशन, तो आपका जो ब्रेन की कॉग्निटिव एबिलिटीज है वो ग्रो करती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी गेम उठा लें और खेलना शुरू कर दें और पूरा दिन वही खेलते रहें, कहें कि हम गेम्स खेल रहे हैं तो हमारे मेंटल यू नो एबिलिटीज बढ़ रही हैं, ऐसा नहीं है। और दिमाग को शांत करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये कंटिन्यूअसली वर्क करता रहता है इवन इफ व्हेन यू आर स्लीपिंग। सो ये वीकेंड एपिसोड है और मैं ये चाहता नहीं हूं कि आप अपने दिमाग पे ज्यादा जोर दें, तो ये गाना सुनिए, रिलैक्स कीजिए। अगर आपके पास ग्लास ऑलरेडी है तो उसको खाली मत होने दीजिए, और अगर आपके पास ग्लास नहीं है तो जस्ट इस गाने का सुरूर लीजिए और एंजॉय कीजिए अपने वीकेंड को मेरे यानी आपके अपने देसी आज विकास के साथ।

देसी के आज के एपिसोड में हमने बात की ब्रेन की और ब्रेन से रिलेटेड ही कुछ फन फैक्ट्स। तो एक और फन फैक्ट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि द ब्रेन ऑफ अ ह्यूमन कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 100 बिलियन न्यूरॉन्स। तो ये न्यूरॉन्स किस काम में आते हैं? बेसिकली इंफॉर्मेशन जो हम देखते हैं, सोचते हैं, करते हैं रन्स बिटवीन दीज न्यूरॉन्स इन आवर ब्रेन एंड देन दीज न्यूरॉन्स मूव इंफॉर्मेशन एट डिफरेंट स्पीड्स विद इन आवर बॉडी। सो जैसे ही आपको फॉर एग्जांपल आपके जो क्विक रिएक्शंस होते हैं या अगर आपको कहीं चोट लगती है या आप कुछ देखते हैं या आपको कुछ एहसास होता है, यू फीलिंग्स होती हैं जो आपको सेंसरी इमोशंस होते हैं जो उनको आपके ब्रेन तक ले जाते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं, दीज आर न्यूरॉन्स। एंड होल्ड ऑन एंड व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, जस्ट लिसन टू इट। द फास्टेस्ट स्पीड फॉर इंफॉर्मेशन टू पास बिटवीन न्यूरॉन्स इज अबाउट 250 माइल्स पर आवर। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मिथ जो चली आ रही है बहुत जमाने से वो ये है कि ह्यूमंस ओनली यूज 10% ऑफ देयर ब्रेन। Well, we actually use all of it and we are even using more than 10% when we sleep. In fact, 20% of our brain still works when we are sleeping because we are dreaming, we are thinking, we are imagining, and it's a complex process in which brain is working subconsciously. और कहते हैं ना कि ड्रीम्स में ही हम अपनी बहुत सारी चीजें इमेजिन कर लेते हैं और बहुत सारी चीजें हम देख लेते हैं जो हमारे पास्ट में हुई हैं, जो फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट करते हैं। और पता नहीं आपके साथ होता है कि नहीं, मेरे साथ तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हुए हैं लाइफ में जो मुझे लगते हैं डेजा वू, यानी कि मैंने ऐसा मोमेंट पहले जिया है। तो होपफुली, या मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि शायद मैंने सोते टाइम इमेजिन किया था कुछ ऐसा और वो ड्रीम रियलिटी में कन्वर्ट हो गया था। तो इस वीकेंड पे आप भी कुछ अच्छा सा ड्रीम कीजिए अपनी लाइफ के बारे में और कुछ पॉजिटिव सोचिए किस तरह से आप अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव सोचना तो बहुत आसान है, पॉजिटिव सोचने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट तो लेना पड़ेगा। लेकिन ट्रस्ट मी, आई टेल यू दैट इफ यू थिंक पॉजिटिव योर एंटायर आउटलुक एंड योर लाइफ विल बी फार फार बेटर। बी माइंडफुल and be thoughtful but don't think too much. Enjoy कीजिए अपना weekend. मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते। तो जब तक हम मिलते हैं दोबारा, अपना ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, good night.